0: उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो।
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
0: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या